0: और मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो पियम ये करे वेर क्वारो
0: और मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो

0: और मैं पाचू
1: इटीनो और रेडियो यूं ये करे वेर क्वारो
0: अलीशान
1: मैं पाचू इटीनो और रेडियो

0: और मैं पाचू
1: इटी विनो और रेडियो इटी विनो और रेडियो पियों चुनके रे वेर क्वारो
0: पियों

0: और मैं पाचू
1: इटीनो और रेडियो पियम चुनकरे वेर क्वारो
0: पियम चुनकरे वेर क्वारो
1: बीमारा मैं पाचू
0: बीमारा मैं पाचू
2: इवान लंग यू बिरू टेला
1: इटीनो और रेडियो

0: और मैं पाचू
1: ईटी यूनियो और रेडियो
0: मैं पाचू
1: ईटी यूनियो और रेडियो